0: हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
1: बिरामी जाँच यही असार 19 गते शुक्रबार पूर्वान्न 11 बजेदेखि 20 गते शनिबार मध्याह 12 बजेसम्म।
0: सम्पर्क सुन्दर पोखरा।

Royal Metal Industries को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल SS Pipes, नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

0: गर्मी भायो के छी सो पिउना
1: पिउना लाई चिसो उठाउ हर्ले
2: हर्ले गर्मी मनाया त्वे
1: रिफ्रेशमेंट पा न्यूट्रिशन मीट
2: चिसो हर्ले।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

सुंघण दो बस सुंघण दो खाली पन ते सोना सोनापन है बड़ी बेचैनी ते कल्लापन है तन रूह कांप रही मौत कही आलाप रही कल्ला सुखदा सा रुकदा प्राण मेरे खिचदा खिचदा किस गेम खत्म ना हो जावे मैं खुद सही अब लुकदा सुखदा हाँ।

0: Vatsalya Pokhara Clinic, New Road, Pokhara. Fertility Hotline 01-597-06-11.
1: ओहो नासर बे कति छाब डिजाइन बे मारेगा ना खिनानी खनी तोला
2: खनाई दिवा नासर बे रूपाकोट ज्योति सुनचांदी दुकान महेंद्र पुलाजी तोला
1: ए नई छाबा मार दुकान पो मोना नई प्रेसलाई नी चार चूरा रैया औठी हमेला झोका टस टिक्री हार तान चनै तो होनी जग मात्र आंगी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिसानारी डेल्ले छाबा कोपिम ओछे
2: हजुर किमे झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना सैदी मिशा वा चुवल तुई बिशा रूपाकोट ज्योति सुनचांदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखी चोकै यावै क्यार मोहै
1: जग मात्र आँगी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखराई महेन्द्र पुलरी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: तमुताई रबा ता क्रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्ने यामो
1: तोई मिल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-5508-15 98-560-35-815

0: यति बेला रातिको 8 बजेको छ।
1: यस टाइम चेकका प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचारी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
2: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

गोयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल SS5 नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखी सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।